Jesus. Finjing Marikita, Satichi Bigger, the Finny Jesus. Tan Dutcher is an Tangan so hito shumika. Drajo jigs at your Drajo jigg ching out at a Finny jigg in the air. So long in the territory in Junior's antiquity. Tan dea, Tigetella Sajatiji and Tombates or Ranso so good Tonsites or the Anni Pass Janso Gani, Casacamilopa, Wondry Shivy Casilla, Anni Tab Devichi, Anni Tonsites or Pass Monovich, Tongazilla. अनि नवी कन जरी ता हरी की जगे तेसो जितने ज़्यादा सुनिए को क्रोमो योरवा येरी तेसो ला अनि लेमोसी ने पेटी ने अनि येरी ना सोचे जीने तेसो थोला तात तेसो लो थोंगे तेरे शिवालय तेने अनि रंग के लेता फेंजी तें इधर लेता तेरे के फेंजी जी जगे ते अचंजी तेसो शो कांसर ला अनि छबा Tendai Delta, Feni Jij Drajo Yige Te, Mang Shini, Ani Nzani Lata, Narsota, Shokansalata, Yansa Jigis and Modu and a Draja Jig in the Tower. Tiang Anso, Shashore Petsuma Injina, Ani Aramag, Yansa Jumalat in Jigi. Ah, Tatima Bangarzo Mahushul want Tampaina, Ani, Jangani, Jagarjita, a Yansa Mala Jigi. Tinata Jagarji. अनि यिगे दलतेनि अनि शिजुता सुईता अनि पेईता अनि कामुनजागे यिगे लासोबा तेंजे कि इरमाबो जि कोपेस मास नशोस अनि फेंजि यिगे ते जेंगे छपा दलतेनि अनि रोम गे यिगे ता आ तेने खाने जि यांसा माला ता अनि ग्रीस गे ता यांसा कमा यांसा यिगे ओ तेसु छु मास अनि ग्रीस गे यांसा यिगे लासोबा तेसोला तेनि अनि तिंगसा गे ता यिंजि गे यिगे जर्मेन गे यिगे Farensi gi yige, ani ırsı gi yige lasıba. Tencereye gita, nasıl yige mambu.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de mo ni xi li nong le chan chan jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यो से चेजो लंका के मांस दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मछु जो जिता मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने चेजो लंका दि पेंडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के के शाम बत कि छि इन रो ति मो ने ला सान रो रे
1: और रे रे रे
2: जे बिन जो को यो को या बोदा
3: 好有了把做清不没有危机场面记住蓝阔了马子有呢也不有主播那把做大大七七星级比林镇的呢北京某某根据农村林刚看看农村节你就是为了人用西北日在林镇的人俺呢你准备穷大意记得没记得没得从嘛容易节三路东西 也不是没那团结结账咱们讲第几没把马子三点的没几笔没忙不些通知月把的三路东修各样当休息些把人呢你当刚一样第几月把人笔从没三路各样当休息些着呢还将各七八十年第二三八几步当那万各位老年年节顶别那些些年呢赶紧到